हर हर नाम अतोलक पाया, तेरी भगत भरे भंडारा। समुंद विरोल शरीर हम देखिया, एक वस्त अनूप दिखाई।

बल जावे दोहराए सजन प्रताप दे देवन बड़े हो प्रताप तीन लोग जय जय करे हरे नाम संजाव दोहरा सकल द्वार को छाड़ के देव द्वार द्वार माएंगे कि लाज आज गोविंद दास द्वार दोहरा राज करेगा काल साखी रहे ना कोई द्वार द्वार होए सब है के बड़े सब जो होए दोहरा के सब सब के करुड़ा भासार डंगा वाजे रे गा है करते अवतार सदा चक्रवर्ती सदा चक्र भुक्ते स्वयं मां सुभंग सर्वदा संयुक्ते सकाल प्रणाति दयाल स्वरूप सदा संगे अपहं प्रभुते एक को मते निरत भेद रंगी अवतार जगमग जोत विराज श्री अब्दुल नयापा सच खंड के

एक रूपे। न नेहं न गेहं न शोकं न साकं परेयं पवित्रं पुनीतं अताकं न जातं न पातं न मित्रं न मंत्रे नमो एक रूप तंत्रे नमो एक तंत्रे। न धर्मं न परमं न सर्मं न साके न बर्मं न चर्मं न कर्मं न बाके न सत्रं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो आद रूपे नमो आद रूपे। कहूं कंज के मंज के परम भूले कहूं रंग के राज के धर्म अलूले कहूं देश के पेश के धर्म तामे कहूं राज के साज के बाज तामे। कहूं अक्षर के पछर के सिद्ध साधे कहूं सिद्ध के बुद्ध के बृद्ध लाधे कहूं अंग के रंग के संग देखे कहूं जंग के रंग पेखे। कहूं धर्म के कर्म के हरम जाने कहूं धर्म के कर्म के परम माने कहूं चार चेष्टा कहूं चित्र रूपं कहूं परम प्रज्ञा कहूं सर्व भूपं कहूं नेह गृहं कहूं दो देह दोखं कहूं औषधि रोग के शोक सोखं कहूं देव विद्या कहूं दैत बानी कहूं जच गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी छात की तामसी हो कहूं योग विद्या तरे तापसी हो। कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतं कहूं भूम की भुगत मैं परम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जच विद्या तरे मानवी हो। कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं सृष्टि की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूं वेद विद्या कहूं व्योम बानी कहूं कोक की काव कथा कहानी कहूं अद्रसारं कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र बानी कहूं क्षुद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चेष्टा चार चित्रं स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ कुरान के गीत गावे कहूं शुद्ध सेखं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं से वृद्ध अवस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूं ने देहं कहूं त्याग गृहं कहूं योग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग रहर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राज साजं कहूं राज रीतं कहूं परम पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं आरबी तोर की पारसी हो कहूं पहलवी पश्चवी संस्कृति हो कहूं देश भाख्या कहूं देव बानी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारं कहूं जंत्र रीतं कहूं सत्र तारं कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूं बीन विद्या कहूं गान गीतं कहूं मलेश भाख्या कहूं वेद रीतं कहूं नृत्य विद्या कहूं नाग बानी कहूं गारुड़ गुड़ कथा कहानी कहूं अक्षरा पछरा मछरा हो कहूं वीर विद्या पूतंग प्रभा हो कहूं छैल छाला तरे छत्र तारी कहूं राजसाजं राजा तिकारी। नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता अछेदी अछय आद अद्वै विधाता न त्रस्तं न ग्रस्तं समस्तं स्वरूपे नमस्तं नमस्तं त्वस्तं अपूते त्व प्रसाद पादड़ी छंद। अभ्यगत तेजन पव प्रकाश अच्छा स्वरूप अद्वै अनास अनतुट तेजन खुट पंडार दाता दुरंत सर्वंग प्रकार अनभूत तेजन छिज गात करता सदी हरता सनातासन अडोल अनभूत कर्म दाता दयाल अनभूत धर्म। जय सत्र मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र प्रात नहीं मित्र मात जय कर्म।

जू जुअंग भय कंपह मेर पयाल पुहंग तब तापस सर्व जलेर थलंग धन उचरत इंद्र कुमेर बलंग अनखेद स्वरूप अभेद अभ्यंग अनखंड अभूत अछेद अछे अंग अनकाल पाल दयाल अस्वंग जय ठटियंग मेर आकाश पुहंग अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जय रचियंग देव अदेव परंग सब कीनी दीन जमीन जमा जय रचियंग सर्व मकीन मका जय राग न रूप न रेख रुखंग जय ताप न साप न सोग सुखंग जय रोग न सोग न भोग भोयंग जय खेद न छे भेद न छेद छयंग जय जात न पात न मात पितंग जय रचियंग छत्री छत्र छितंग जय

परे है, पवित्र है, पुनीत है, पुराण है, अगंज है, अपंज है, करीम है, कुरान है, अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न सोग है, न भेद है, न पंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न साथ है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, परमाथ है, न सीत है, न सोच है, न क्राम है, न काम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है।

अदोख है अदाग है अच्छे प्रताप पेखी है। न कर्म है न परम है न धर्म को प्रभाव है। न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाओ है। न छल है न छिद्र को स्वरूप है।

गजा तपी नरा तपी करंत हे सेव है सदा चितस्पति तपस्पति वनस्पति जपस सदा अगस्त याद जी बड़े तपस्पति तपस्तपी बिसेखिया बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखिया अगाध आद देव की अनाद पद मानिया न जात पात मंत्र मित्र सत्र

तह को मनमा जह को अमित तोज सब जग छायो वेद पुराण कदेव कुरान अभेद निर्पाण सब पचहारे भेद न पाए सक्यो अन भेद को खेद तहन छेद पुकारे राग ना रूप ना रेख ना रंग ना साक ना सोक ना संग तिहारे आद अनाद अगाध फेकत वैग जप्यो तिन ही कुल तारे तीरथ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत तारे देश प्रयोग कर पेश तबोधन के धरे न मिले हर प्यारे आस

आतर के चलैया छित्र छत्र के तरैया छत्र धारियो के छलैया महासतरण के साल है। दान के दिवैया महामान के बढ़ैया वसान के दिवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दादा देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्वी ना पार पावे हिंगला हिमालय त्यावे गोर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है। जोगी जोग साधे पवन साधना कतेक बाध अरब के अरबी आराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माना कंधारी कुरे सी जाना पछम पछम के पछमी पछाना निज काम है। मरहटा मघेले तेरी मन सो तपस्या कर दृढ़ वह तलंगी पहचाना धर्म धाम है। बांग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिलवाली तेरी आज्ञा में चलत है। रोह के रोहिले मांग देश के मंगेले वीर बांग सी बुंदेले पाप पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे चीन मचीन के शीश ने आवे तिब्बती ते आए दुख।

अद्वै अविनाशी परम पूरन प्रकाशी महारूप हूं के राशि है अनासी कह कह मानिया है। जंत्र होना जात जागी बाप होना मायता की पूरन प्रभागी सो छटा के अन्न मानिया है। तेज हूं को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कह कह जानिया। तेज हूं को तार है के राजसी को सार है के शुद्धता को कार है के सिद्ध।

सुंदर स्वरूप है के पूपन को पूप है के रूप हूं को रूप है को मत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनीमन को कारक है साधन को रक्षक है गुणन को पहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अक्षय अविनाशी है। काम को कुनिंदा है के खूबी को देहंत है गनीमन गरिंदा है के तीज को प्रकाशी है। काल हूं के काल है के सतरण के साल है के मित्रण को पोगता के वृद्धता की बासी है। जोग हूं को जंत्र है के तेज हूं को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के

देवन को देव है निरंजन अभेव है, अदेवन को देव है कि शुद्धता को सार है, ज्ञान को बचैया है ईमान को दिवैया है, जब जाल को कटैया है कि कामना को कर है, तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है, महीपन को मंड है कि स्त्री है ना नर है, विश्व को पर्ण है कि आपदा को हरण है, कि सुख को कर्ण है कि तेज को प्रकाश है, पाइय न पार पारावार हूं को पार जाकू की जित विचार सो विचार को निवास है, हिंगुला हिमालय गावे हबसी हलबी द्यावे पूर्वी ना पार पावे असत अनास है, देवन को देव महादेव हूं के देव ना है, निरंजन अपेवनाथ अद्वै अविनाश है, अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है, कटैया जम जाल की देवन के देव महादेव हूं के देवनाथ, भूम के पुजैया है मोहिया महाबाल की, राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग हूं के जोग है, तरैया द्रुम छाल के कामना के कार है के बुद्धता को हार है, के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के, चीर कैसी छीरावद छाछ कैसी छतरा नेर छपागर कैसी छब कालिंद्री के कूल के, हंस निसी सिहारू हीरा सी हुसैनाबाद गंगा कैसी तहार चली सातो सिंध रूल के, पारा सी पलाऊगण रूपा कैसी रामपुर सोरा सी सुरंगाबाद नीके रही झूल के, चंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के, फटक सी कैलाश कमाऊगढ़ कांसीपुर सीसा सी सुरंगाबाद नीके सोही अतहा, हिमा सी हिमाल हर हार सी हलब्बा नेर हंस कैसी हाजीपुर देखे मोही अतहा, चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रागिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोही अतहा, गंगा सब गंगधार बकान सी बलिंदाबाद कीरत तिहारी की।

0: लेकिन चंगी तरह साडा कब्जा नहीं होया, साडे चंगी तरह पैर नहीं टिके हन। हुण इन्ने वरे सानू इत्थे रहिंदे हो गए हन, लेकिन कोई भी ए जमीन दा टुकड़ा हिस्सा जेड़ा साडे हिस्से विच नहीं आया। जिस तरह के दूजे जमींदार जेड़े हन, चौधरी जेड़े हन, उन्हां नूं तां तगड़े तगड़े इलाके कई पिंड मिल गए, लेकिन असी महाराज इत्थे थक हार करके रह गए हां, कोई तगड़ा इलाका साडे हिस्से विच नहीं आया।
1: दया सिंध सुन धीरज दीना,
0: ए सुन करके दया सिंधु धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने इन्हां नूं धीरज दित्ती है।
1: तो देश सकल ही
0: महाराज जी ने कहा, भाई राम सिंह जी, भाई त्रिलोका सिंह जी, तुसी क्यों फिकर करदे हो, यह निकिया निकिया रियासतां, यह निके निके इलाके पिंडां दी क्यों ख्वाहिश रखते हो, तुहाडे उत्ते गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी प्रसन्न हन, यह छोटियां गल्लां छड़ दिओ, तुसी देश दे मालक हो गए, देश जिहड़ा है वह तुहाडे कब्जे विच आवेगा।
1: ऐसे पाए तुम्हारे जमाए,
0: हुण तुसी कहिंदे कि महाराज आ छोटा को इलाका छोटे पिंडां दे विच साडे पैर नहीं जम्मण देंदे, पिंडां दी गल छड़ दिओ भाई, वड्डा वड्डा इलाका रियासत जेड़ियां ओदे विच तुहाडे इस तरह पैर जम जाणगे।
1: भूप देश गन नमा,
0: ते नाल इह तुहाडे राजे जिहड़े पीढ़ी दर पीढ़ी राज प्राप्त होवेगा, ते वड्डे वड्डे राजे महाराजे जिहड़े हन ओह आ करके तुहाडे घर दे विच नतमस्तक होणगे।
1: दिल्ली लोहपुर के विच वधो,
0: ते नाल तुसीं दिल्ली अते लाहौर इह दोवें वड्डियां राजधानियां जिहड़ियां इन्हां दे विच ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਵਧੇਗਾ।
1: ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਹੋ,
0: ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਨਗਰ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਸਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ, ਈਰਖਾ

मिल संगत गुण प्रकाश जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए दृग जीव दृग जीवास जिन हर जिन सतगुर संग

किंचित वह उदम जा आहर हर जियो परया सैल पथर मह जंत उपाए ताका रजक आगे कर धरिया मेरे माधव जी सत्संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ जन पिता लोक सुत बंता कोय न किसकी धरिया सिर सिर रजक संबाहे ठाकुर काहे मन भाव करिया ऊडे ऊड आवे सह कोसा तिस पाछे बछरे छरिया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन मह सिमरन करिया

जी तेरे क्या गुण आख वखाणा, जो सेवह जो सेवह तुद जी, जन नानक तिन कुरबाना। हर ध्यावह तुद जी, से जिन जुग मह सुख वासी, से मुकत भये, जिन हर ध्याया जी, तिन तूटी जमकी फासी। जिन निर्भव जिन हर निर्भव, ध्याया जी, तिन का भव सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर ध्याया जी, जन नानक तिन बल जासी।

तुमरा लखा न जाए पसारा, कह बिद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा, अंडज जे रज से तज कीनी, उत्भुज खान बहर रच दीनी, कहूं फूल राजा है बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो, दुष्ट जिते उठवा तुत पाता, सकल मलेच्छ करो रण घाता, जे अस ध्वजताओ शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तुहे मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार धिए हैं, ताके काल निकट नह हैं, रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्टन जाए निहर हो, ताके ताप तनक महर हो, रिद्ध सिद्ध घर मो सब होई, दुष्ट छा छुए सकै न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांस ते ताहे उबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दोख ते रहा, खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दै लेहु उबारी, सर्व ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते लेहु बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता, केलबिक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को छय करता, श्री अलदुजा भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांशत फल पावे सोई, दुख न तसै पे आपत कोई अड़ल।

सगरी पुरी समेत चौपई जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे बिशन भगत किए फल होई आद ब्याह छह सकै न कोई सम सत्रह सहस।

सवैया पाए गहे जब ते तुम रे तब ते कू आख तरे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो श्री अस पान कृपा तुम री कर मैं ना कहो सब

साहिबजादे साहिब अजीत सिंह जी, साहिब जुझार सिंह जी, साहिब जोरावर सिंह जी, साहिब फतेह सिंह जी, पंज प्यारियो चाली मुक्त्यो सर्व शहीदो मुरीदो सचियारियो प्यारो सब थाई होए सहाय। सलोक महला दूजा, आपे जाने करे आप आपे आने रास, तिसे अगे नानका खले कीचे अरदास। सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहिब बोलो जी। सर्व समकाल से जी की अरदास श्री वाहिगुरु जी के पास, जहां जहां गुरु खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत, बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी का मन नीवा मत ऊची मत पद का राखा, आप वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे, चेतावन का सदका सर्व सुख होवे। खालसे जी की देख देख फते, चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल रहे, धर्म का जयकार खालसा जी साहब बोलो जी। खालसे जी को नाम दान सखी दान गुरमत दान, बुद्ध बवेक रहत रिछा दान। खालसे जी को श्री हरमंदिर साहिब अमृत सर सरोवर जी के स्नान, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दार मिले बोलो जी। श्री अकाल तख्त साहिब जी संतोख सर जी, बवेक सर जी, राम सर जी, कौल सर जी, तरन तारन जी, तपियाने जी, खडूर जी, गुरु की बावली, श्री गोविंदवाल साहिब जी के स्नान दर्शन दार मिले बोलो जी। थम जी ननकाने जी, करतारपुर जी, बाबे नानक डेहरे जी, तख्त केसगढ़ साहिब, आनंदपुर जी, कीरतपुर जी, पातालपुर जी, लखनौर जी, चमकौर जी, फतेहगढ़ साहिब जी, दमदमा साहिब जी, धमतान जी, मुकतसर जी, पौंटे जी, तख्त पटना साहिब, हरमंदर दिल्ली में शीशगंज, रकाबगंज, बाला साहिब, बंगला साहिब, सत्तो झंडिया साहिबां जी दे सुख दे दर्शन दार मिले बोलो जी। बगौड़ साहिब जी, पंजे साहिब जी, कपाल मोचन जी, रण मोचन जी, नानक मत्ते जी, तिलगंजी जी, नानक जीरा जी, शिकारघाट जी, हीरा घाट जी, माता साहिब देवा जी, संगत साहिब जी, माल्टेकड़ी साहिब जी, बसमत नगर, दमदमा साहिब जी, बंदा घाट जी, नगीना घाट जी, श्री गंगा जी, गोदावरी जी के स्नान दर्शन दार मिले बोलो जी। सर्व समुखालसे जी को नगारे आ निशान साहिबा संजगत, तख्त सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब जी दे सुख दे दर्शन दार मिले बोलो जी। सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहिब बोलो जी। सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहिब बोलो जी। बोलो जी बोलो जी बोलो जी श्री वाहिगुरु जी। जी गुरु गरीब नवाज अंतर जामी सचे पातशाह जी महाराज, आप जी के अजुर अमृतमयी शब्द बाणी कीर्तन चौकी सोधर रहरा साहिब जी की अरदास, अखर वादा घाटा भूल चुक माफ करना, बाणी सच खंड विच प्रवान करना, आईया समूह संगतां दी हाजरी प्रवान करना, सिख पढ़दे सुणदे सरबत लाहे बंधौण, गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, सरबत का भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

पहला घड़िया सबे गोपियां पैर कन गोपाल गहने पौन पानी बसंत चंद सर जाता सगली धरती माल धन।

महला पहला मुसलमान सिंसरियत प्रकट करे विचार बंदे से जे पहचबंदी वेखण को दीदार हिंदू सराय सरा दर्शन रूप तीर्थ ना हर चा पूजा करो आसवेकार जोगी सुनते आऊं जी तेरा काम करता सुख मूर्त नाम निरंजन काया का कर सतिया मन संतोख मुझे देने के विचार दे दे मैं सैसा गुणा सब करे संसार चोरा जाना ते कुणारा खारा बावे का एक खंदा खाए चले था उतना बेकाई का जल थल जिया पुरिया लो आकार आकार ओ जा खिस्तु